exco fm kawa ulengwa emtene kuchu awngo program go sauji che ka ke radu ke kawe tu ka kai se pangmo go sidai ka wa ulengwa tama sidai ge ahmani te kan go supa amo pangwa ulengwa ngo chi tab go sauji se ka tama sidai ge kawe tu kai se pangwa go e kai kwa radu ge nimuru ya oni ten seva pen ne fm ngan tu tu go e awngo la tama sidai ge मैं कुमिशन का बंदे है अतिजी के कुंखन को शिपा के सेज मिनटे मोंग टांग वा उलंगो इंहोजी तबंगो सकोजी चे काके राधु के कबे तू खाई सी पंग वा कुए खाई कुआ राधु के नुमरु या उन्हें टेंस सेवा पेन नेखा एफएम मन तो तू कुए आउंग वा उलंगो तमोसी तके सेज मिनटे चुआंग मुंतन चुंग वा ता सकोजी चे काके राधु के कबे तू खाई सी पंगो को सी ते का उआ मेंग वा टांग हम के कनुसी सकोजी तके आखसी ने के चुकुना ये कोई कम हो सेव अमन हो सेव के कनुसी से पंग वंग है तके खसुनित को जिंग नव थुले पंगो को सिम वो अच्छे के मतलब चोंग वा वो लंग जी चा हम कोई सकोजी से का के राधु के कबे तू खाई से अकोई खाई को राधु के निमुरु या होने तें सेवा पेन नेखा एफएम मन तुतु कोई आ मो का वो लंग जी चा हंगुए साउजी सिगां को कौन काया तो मस्जिद के वो लंग न्यूटन हो जित तबा या कौन दे का वो क्राइम के सेफ्टी का नुसे आउट सिंग लेकिन सेफ्टी का जिंग आउट ले पंगो आउट सिंग वो अच्छे के दर्जों में वो लंग जित चंगुए से देंचिम का के रेस्ट का के वो लंग को ना के मंगा मसो तंदुरुस्त उंगा वो लंग